0: थी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना समूह स्वर में देशगान। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पारंपरिक रचना।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में पारंपरिक भक्ति गीत।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं बुद्ध वंदना। स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

लता मंगेशकर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी बालाघाट का। इस समय सुबह के 6:31 और 20 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज की कड़ी में आलेख

0: बी के मंजुषा का है।
1: भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं,
2: अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं रीरचापलम्।
1: मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा चित्त की चंचलता का अभाव होना, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब प्राणियों में हेतु रहित दया भाव बनाए रखना, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, स्वभाव की कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा भाव रखना और व्यर्थ चेष्टाओं से दूर रहना।
2: तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोः नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत।
1: तेज क्षमा धैर्य अंतर बाह्य शुद्धि शत्रुभाव का अभाव एवं अपने में बड़प्पन का अभिमान न रखना आदि दैवी संपदा वाले पुरुष के लक्षण हैं।
2: दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्।
1: अब आसुरी संपदा के संबंध में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पाखंड घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं।
2: दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव।
1: दैवी एवं आसुरी दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू तो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है।
2: प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।
1: हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य तो कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है और न श्रेष्ठ आचरण तथा सत्य भाषण ही होता है।
2: असत्यम अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्य।

कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे बीके मंजूषा का लिखा आलेख। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 6:35 और 50 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर ए हरिहरन का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के लिए संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाए और इस तरह बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर ए हरिहरन का था, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 6:46 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:50 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। सुबह 7:20 का समय निर्धारित है हमारे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का। सुबह 8:15 पर हमारे स्टूडियो से फिल्म संगीत, माफ़ कीजिएगा, इसे दोबारा सुन लीजिए। सुबह 8:15 पर हमारे स्टूडियो से सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया।

जाएगा। सुबह 8:30 का समय होगा, कार्यक्रम महिला जगत का। सुबह 9 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आपके लिए करेंगे। पत्रिका कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं सुबह 10, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी भोपाल से। हमारे स्टूडियो से सुबह 10:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अपने निर्धारित समय सुबह 10:30 पर प्रसारित होगा। सुबह 11 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों से एक बार फिर आप जुड़ सकेंगे। आज की सभा में समाचारों का समय होगा, प्रादेशिक समाचार सुबह 7:10 पर, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी भोपाल से करेंगे। राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे। ये थी जानकारी श्रोताओं हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की, और अब एक नज़र हमारी आज की दोपहर की सभा और सांध्यकालीन प्रसारण सभा के प्रमुख कार्यक्रमों पर। हमारी दोपहर की सभा में दोपहर 2:10 पर प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जाएगा। राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन दोपहर समाचार दोपहर 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम करेंगे। दोपहर 2:30 से शाम 5 तक विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आपके लिए करेंगे। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा का आगाज होगा शाम 5 से कार्यक्रम युववाणी के साथ। शाम 5:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे। हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट अपने नियत समय शाम 6 प्रसारित होगा। हमारे स्टूडियो से शाम 6:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम 7:21 पर और रात्रि 8 हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे। हेलो ग्राम सभा, इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे शाम 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा। हमारे स्टूडियो से पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम आप सुनते हैं रात्रि 8:30 पर। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में समाचारों के समय होंगे रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट समाचार। ये तीनों ही समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:30 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों से एक बार फिर आप जुड़ सकेंगे। रात्रि 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर सांध्यकालीन प्रसारण सभा के समापन की उद्घोषणा की जाएगी। ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा और दोपहर की सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:50 और 30 सेकेंड्स हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

आशा भोसले के स्वर में कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना। ओपी नियर का संगीत था, फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज। कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के ही स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मेरे सनम से। संगीत एक बार फिर ओपी नियर का है।

सदाबहार फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट से। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत में कैफी आजमी के बोल आप सुनेंगे, जयदेव का संगीत होगा, फिल्म का नाम दो बूंद पानी, आवाज आशा भोसले की।

दुल्हन एक रात की। आइए इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाएं लता मंगेशकर की आवाज़ में। मदन मोहन का संगीत है, राजा मेहंदी अली खां ने इस गीत को लिखा है। आइए सुनते हैं दुल्हन एक रात की इस फिल्म का गाना।

सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं आशा भोसले के गाए इस गीत से, और इस गीत को हमने लिया है ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म से। आइए सुने इस गीत को।

0: आशा भोसले के गए इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। विश्व के नेताओं ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को हराया। अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से। अब समाचार विस्तार से।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। पेश है एक रिपोर्ट।

0: किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत 12 से 18 जून 2026 की अवधि में जिले के प्रत्येक विकासखंड नगरीय निकाय मुख्यालयों पर जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तेलंगाना की अदालत में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भाजपा की शिकायत पर यह कार्यवाही राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी ने की है। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जानकारी छिपाई गई थी, यह एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उनने एक्सेप्ट किया।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की बैठक भी होगी। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों तथा सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने फर्जी खातों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय, पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा और वसूली तंत्र, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्मों का बेहतर प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली में अधिक जवाबदेही, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी सुझाव दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत

0: 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहाँ सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। रंगिरी दम्बुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। सभी मैच दम्बुल्ला में खेले जाएंगे और फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर में 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी जिले में संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शिवपुरी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 साल पूरे होने के अवसर पर 1 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आगर मालवा जिले के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। देने के उद्देश्य से 12 से 18 जून तक विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित हमारे शिक्षक ऐप प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: यह दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल

0: ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और श्रोताओं आप हमें सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। सुबह के 7:21:20 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

श्रोताओं सुप्रभात। नमस्कार, बालाघाट के दिनांक 10 जून 2026 के इस अंक के साथ आज मैं विनय श्रीवास्तव सभी सुनने वालों को

मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुविचार से। आज का सुविचार कहता है, किसी दार्शनिक की कलम से हमने यह विचार लिया है। वे कहते हैं कि बदलाव जिंदगी की प्रकृति है, लेकिन चुनौतियां जिंदगी का भविष्य। श्रोताओं, जब इस विचार पर चिंतन करते हैं तो बात सही लगती है कि बदलाव या परिवर्तन जो है जिंदगी का, जीवन का एक अहम हिस्सा है और यही प्रकृति भी है। अब देखिए, हर दिन बदलाव का दिन है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। यानी देखिए, प्रकृति के अनुसार भी हम देखें और सोचें तो बात सही है कि आज यदि हमें गर्मी लग रही है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बारिश का मौसम होगा, बारिश होगी, वर्षा ऋतु आएगी और वर्षा ऋतु के बाद फिर एक बार शीत ऋतु आएगी। यही बदलाव है प्रकृति का और यही बदलाव हमारे जीवन का भी है। एक दिन यदि हमारा अच्छा नहीं गुजरा तो जरूरी नहीं कि दूसरा दिन भी अच्छा नहीं गुजरेगा। यदि हम प्रयास करेंगे और सही दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। यानी बदलाव जिंदगी की प्रकृति है, ये बात तो सच है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। अब देखिए, कल मंगलवार था, आज बुधवार है और आज तारीख भी बदल गई, आज 10 तारीख है। यानी हर दिन बदलाव का दिन है, परिवर्तन का दिन है और ये परिवर्तन ही जिंदगी है। सही मायने में देखा जाए तो यही परिवर्तन हमारा जीवन भी है, जो हमें हर पल सिखाता है परिवर्तित होना और परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालना। तभी हम आने वाले समय की तैयारी कर सकेंगे। इसी विचार में एक बात और कही गई है कि चुनौतियां जिंदगी का भविष्य हैं। जब हम आज की बात करते हैं तो आज का जो दिन है, आज का जो समय है, परिवर्तन लगातार हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है और इस पल को जब हम जीते हैं, अपने अनुसार ढालते हैं या उसके अनुसार ढलते हैं तो हम उस संघर्ष को जीते हैं और अपने जीवन को जी पाते हैं। लेकिन आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, वो हमारा भविष्य बना देती हैं। जब हम चुनौतियों से दो दो हाथ करते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, चुनौतियों से लड़ने की क्षमता हम रखते हैं, उन पर जीत हासिल करते हैं, तो वो चुनौतियां हमारे भविष्य को, हमारे आने वाले कल को सुनहरा कर देती हैं। श्रोताओं, ये विचार जो हैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सीख देते हैं और हमें आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा भी देते हैं। यही वजह है कि हम हर दिन कार्यक्रम की शुरुआत में आपके साथ सुविचार साझा करते हैं। अब देखिए, आज का जो विचार था, बदलाव जिंदगी की प्रकृति है और चुनौतियां जीवन का, जिंदगी का भविष्य। और जब इस विचार पर हमने चिंतन किया, विश्लेषण किया तो बात सही लगी कि जब हर पल हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है और उसके अनुसार हम परिवर्तित हो रहे हैं तो क्यों ना जीवन की चुनौतियों को भी हम स्वीकार करें और चुनौतियों को पार कर अपने भविष्य को सुनहरा बना लें। और श्रोताओं, कहते भी हैं ना कि जो चुनौतियों को स्वीकार करता है वही अपना जीवन पार करता है। और श्रोताओं, वो कहते भी हैं ना, इसी बात से एक बात और जुड़ जाती है कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तभी आता है जब आप अपने आप को, स्वयं को अपने कंफर्ट जोन से, आराम क्षेत्र से बाहर निकालने का साहस करते हैं और साहस से ही सफलता की पहली सीढ़ी आप चढ़ जाते हैं। तो चलिए, जीवन की चुनौतियों को, आने वाली जो भी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन्हें स्वीकार करें, हंसते हंसते स्वीकार करें और उनके रास्ते खोजें कि इन्हें हम किस तरह से समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये था आज का सुविचार, जो हमसे कह रहा था, बदलाव जिंदगी की प्रकृति है लेकिन चुनौतियां जिंदगी का भविष्य। फिलहाल हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में ले रहे हैं अब एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल। अंतराल के बाद हम लौटेंगे तो आपसे साझा करेंगे आज की तारीख से जुड़ा हुआ इतिहास। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, आज विनय श्रीवास्तव के साथ।
1: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
0: ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
2: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
0: और ग्रीन एनर्जी पाएं
2: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे

0: बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
1: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस।
0: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
1: और चले आएं ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर काली पुतली चौक मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 8770854830
1: 7581938175।
2: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
3: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
2: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
3: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
1: श्रोताओं, हम हाजिर हैं अंतराल के बाद अपने वादे के मुताबिक आपसे आज की तारीख से जुड़ा हुआ इतिहास साझा करने के लिए। श्रोताओं, इतिहास के पन्नों की बातें करें तो बता दें कि ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार 10 जून जो है 166वां दिन है वर्ष का और वर्ष की समाप्ति में अभी भी 204 दिन शेष हैं। अब क्रम सिलसिलेवार इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज की तारीख से जुड़ा हुआ इतिहास। और इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें श्रोताओं, क्या कुछ खास है आज की तारीख का इतिहास। अव्वल नजर डाली जाए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर। आज की तारीख में 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकाशीय बिजली में विद्युत होने का पता लगाने के लिए लोहे के तार वाली पतंग आसमान में उड़ाई थी। आज की तारीख में 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और आज की तारीख में 1940 में ही कनाडा ने इटली के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा की थी। 1967 में आज की तारीख में इसराइल और सीरिया के बीच भी युद्ध की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में आगे बढ़े श्रोताओं तो 2323 ईसा पूर्व में विश्व विजेता कहलाने वाले महान शासक सिकंदर का जन्म आज की तारीख में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बाद राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर चर्चा करें श्रोताओं, तो बहुत सी राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं जो आपके साथ साझा करनी है। 1986 में आज की तारीख में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में, जो कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स का मैदान है, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है इसे, इस मैदान पर इंग्लैंड को ही 5 विकेट से हराकर पहली टेस्ट जीत भारत ने हासिल की थी और एक इतिहास रच दिया था। वर्ष था 1986 का। 1972 में मुंबई के मंझगांव बंदरगाह से भारत के पूर्णतः वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण आज की तारीख में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में एक घटना और है। 1999 में इंडोनेशिया में स्वतंत्रता समर्थक नेता जोस रामोस होर्ता ने 23 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद स्वदेश लौटने की घोषणा की थी। और श्रोताओं, आज सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के CEO हैं गूगल के, आज उनका जन्मदिन है। 10 जून 1972 को उनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में भारत के नासिक में 1966 में 10 जून से रूसी लड़ाकू विमान मिग का उत्पादन शुरू हुआ था। ये थी राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। और श्रोताओं, अब आज के दिन की बात कर ली जाए, आज के दिवस की बात कर ली जाए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर, तो आज का जो दिन है 10 जून को मुख्य रूप से विश्व नेत्रदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को मृत्यु के बाद नेत्रदान करने के लिए जागरूक करना है और इस दिन दुनिया भर में नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी लाने के महत्व पर जोर दिया जाता है। और बात ये कही जाती है कि नेत्रदान महादान। तो चलिए, आज के दिवस की प्रासंगिकता यही है कि आप भी कोशिश करें कि नेत्रदान करें और आपका नेत्रदान किसी को जीवनदान भी दे सकता है।

और श्रोताओं, आप कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं रोजगार सूचना। आज की रोजगार सूचना इस प्रकार से है। पश्चिम मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई कटनी जंक्शन में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बताए जा रहे रिक्त पदों के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और ये जो बताए जा रहे पद हैं सीधे साक्षात्कार के आधार पर एक वर्ष के लिए इन पदों पर नियुक्ति होनी है। पदों का विवरण और पात्रता संबंधी शर्तें इस प्रकार से हैं। हम बता दें कि ये पद अंशकालिक आधार पर हैं। पद नाम है, पीजीटी विषय हैं वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित। बताए गए सभी विषयों के लिए एक एक पद पीजीटी के रिक्त हैं। अगला पद है टीजीटी का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, और विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित और सामान्य विज्ञान। कुल रिक्त पद सभी विषयों के एक एक हैं। इसी क्रम में पीआरटी के दो पद रिक्त हैं और पीटीआई का एक पद रिक्त है, जबकि टीजीटी क्रॉफ्ट विषय का एक पद रिक्त है। हम यहां अपने श्रोताओं को बता दें कि आवेदन पत्र ऑफलाइन भरे जाने हैं, जो कि रजिस्टर्ड डाक द्वारा या सीधे कार्यालय में 20 जून 2026 तक शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा हो जाने चाहिए। बताए गए पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां इस प्रकार से हैं। पीजीटी वाणिज्य, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय के लिए और टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए दिनांक 24 जून 2026 को साक्षात्कार होगा। पीजीटी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और टीजीटी गणित और विज्ञान विषय हेतु 25 जून 2026 को साक्षात्कार होगा। पीआरटी विषय के लिए साक्षात्कार होगा 26 जून 2026 को, जबकि पीटीआई और टीजीटी क्राफ्ट विषय के लिए साक्षात्कार 26 जून 2026 को ही आयोजित होगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस रोजगार सूचना से संबंधित और अधिक जानकारी जो योग्य उम्मीदवार हैं, पश्चिम मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई कटनी जंक्शन की वेबसाइट www.wcrschoolnkj.com पर जाकर विस्तृत जानकारी देखी जा सकती है और आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट का पता एक बार फिर हम आपको दोहरा रहे हैं, www.wcrschoolnkj.com। इसके अलावा एक दूरभाष नंबर भी स्कूल ने जारी किया है, जो इस प्रकार से है, 07622-23700। इस नंबर पर आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की रोजगार सूचना। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत का अंदाज कुछ ऐसा है जो अब हम आपको सुनवा रहे हैं। खूबसूरत गजल जैसा है तेरा चांद सा रोशन चेहरा। गौर कीजिएगा, खूबसूरत गजल जैसा है तेरा चांद सा चेहरा, निगाहें शायरी करती हैं तो लब इरशाद कहते हैं।

0: श्रोताओं, नमस्कार। बालाघाट कार्यक्रम का शेष भाग एक छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
1: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
0: और ग्रीन एनर्जी पाएं
1: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
0: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस।
1: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
0: और चले आएं ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर, काली पुतली चौक, मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 8770854830,
0: 7581938175। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं आज की कृषि सलाह। आज की कृषि सलाह हमारे किसान साथियों के लिए इस तरह से है। किसान साथियों, जून का महीना है और जून का पहला पखवाड़ा चल रहा है। ऐसे मौसम में खरीफ फसलों की बुवाई हेतु खेत तैयार करने का ये अनुकूल समय है। इसी समय में उन्नत बीज, खाद और आदि की अग्रिम व्यवस्था की जा सकती है। सिंचित दशा में कपास,

0: मक्का और मूंगफली की बुआई इस माह के मध्य से प्रारंभ करना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए सिंचाई में 15 से 30 जून तक और यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना हो तो वर्षा प्रारंभ होने पर यह किया जा सकता है। सभी तरह की फसलों में पौध संरक्षण का कार्य करने का यह अनुकूल समय है किसान साथियों। भूमि और बीजोपचार के बाद ही फसलों की बुआई करना चाहिए, ये बात अच्छी तरह हमारे किसान साथी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर हम अपने किसान साथियों को ये सलाह देंगे, आगामी खरीफ फसल के लिए भूमि उपचार और बीजोपचार की तैयारी आपको अभी से कर लेनी चाहिए। मौसम की पहली अच्छी बारिश होने के बाद खरीफ फसलों की बुआई करें, उनकी नर्सरी तैयार करें, यानी खार भरने का जो वक्त है, आप देखें मौसम की पहली अच्छी बारिश कब होती है, उसके बाद आप अपनी खरीफ की फसलों की खार भर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। गन्ने की फसल में सिंचाई और खड़ी फसल में नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रयोग करें और मिट्टी चढ़ाने का काम इस समय किया जा सकता है। क्षारीय भूमि में सुधार हेतु सिफारिश के अनुसार जिप्सम का प्रयोग करें और भू और जल संरक्षण का कार्य इन दिनों पूरा करने का अनुकूल समय है। ये थी आज की कृषि सलाह।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का लोकप्रिय एफएम चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, आज विनय श्रीवास्तव के साथ।

0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का एफएम चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, बनी रहिए हमारे साथ। और श्रोताओं अब चलते चलते हम आपसे बस यही कहेंगे कि जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, इससे पहले कि ये पिघले इसका भरपूर आनंद ले लिया जाए। इस गर्मी के मौसम में खरबूज, तरबूज, ककड़ी, कच्चे आम का पना, पेज, पक्के आम का जूस और मन चाहे फलों का, रसदार फलों का भरपूर आनंद लीजिए। इससे पहले कि आपकी आइसक्रीम या जिंदगी की पिघल जाए, इसका पूरा मजा ले लीजिए। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। स्वीकारे मेरा नमस्कार। ये था आज का कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की थी।
1: नमस्कार बालाघाट।

0: श्रोताओं, सुबह के 8 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन समाचार प्रभात।
1: घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को

0: निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्र

0: व्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में

0: अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना

0: 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और आप हमें सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 और 30 सेकेंड्स हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। स्वर और संगीत था इस गीत में पंकज उदास का। आइए सुगम संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन के स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को लिखा है डॉक्टर हसरत जयपुरी ने।

का लिखा यह गीत आपने सुना। और श्रोताओं, वक्त इतना नहीं है कि एक और गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाए, लेकिन हाँ, एक गीत की धुन इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

सखियों नमस्कार, कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और आज के इस नए अंक में नई नई जानकारियों के साथ हम हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत लेकर पूरे 30 मिनट। और यह सफ़र आप तय करेंगे अपनी रेडियो सखी नीतू दांद्रे के साथ। तो चलिए सखियों, बिना देर किए सुनते हैं गीतों और बातों का सिलसिला, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जल संरक्षण की, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व भूगर्भ जल दिवस। सखियों जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सुबह हो जब आप नल खोलें और उसमें से पानी की एक बूंद भी ना निकले, और फिर आपको पता चले कि छत पर लगी टंकी में ही नहीं बल्कि आपके बोरवेल में ही पानी खत्म हो गया है। सखियों यह दिन उस वास्तविकता की आहट है जिसकी तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सखियों धरती के गर्भ में सदियों से संचित वह अमूल्य जल जिसने मानव सभ्यता को जीवन दिया, आज हमारे अनियंत्रित दोहन और लापरवाह विकास की कीमत चुका रहा है। यही कारण है कि हर वर्ष 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाकर लोगों को इस अदृश्य संसाधन के महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। सखियों भूगर्भ यानी जमीन के अंदर का जल केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि जीवन का आधार है, हमारे जीवन जीने की कला है। करोड़ों लोगों के लिए पीने योग्य पानी का मुख्य स्रोत यही है। हमारे कृषि प्रधान देश में सिंचाई का बड़ा हिस्सा भी भूमिगत जल पर ही निर्भर है, लेकिन

सखियों, विडंबना यह है कि जिस संसाधन पर हमारा वर्तमान यानी आज टिका है, उसके भविष्य को लेकर हम सबसे अधिक असंवेदनशील दिखाई देते हैं। सखियों, अनियोजित औद्योगिकरण, बढ़ता प्रदूषण, अंधाधुंध शहरीकरण, नदियों के जलस्तर में गिरावट, पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन ने भूमिगत जल के भंडार को तेजी से घटाया है। सखियों, आवश्यकता है कि जल संरक्षण को व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामाजिक संस्कृति का हिस्सा बनाया जाए। वर्षा जल का संचयन को अपनाना, पानी के अनावश्यक उपयोग को रोकना, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करना और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन की पहल करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। सखियों, आज 10 जून विश्व भूगर्भ जल दिवस यह संकल्प लेने का दिन है कि हम पानी को संसाधन नहीं विरासत मानेंगे और इसका उपयोग जिम्मेदारी की तरह करेंगे, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस भूजल को संरक्षित करके रखें, क्योंकि यह मानव उपभोग के लिए स्वच्छ जल का विशाल प्राकृतिक भंडार है। यहाँ नलकूपों और कुओं की मदद से इस पानी को सतह पर लाया जाता है और हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा किया जाता है। इसीलिए सखियों, जल की हर एक बूंद के महत्व को समझिए और अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके जल संरक्षण के पुनित कार्य में भागीदारी कीजिए। इन्हीं उम्मीदों आशाओं के साथ कि आज से हम सभी जल का संरक्षण करेंगे। और सखियों, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत शोर फिल्म से।

0: सखियों, आंखें हमारे शरीर का सबसे अनमोल और संवेदनशील अंग है, जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने की अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। सखियों, कहते हैं हजारों बातें दिल में छुपी होती है, मगर वो सिर्फ आंखों से बयां होती है। मनुष्य की आंख एक प्राकृतिक कैमरे की तरह कार्य करती है, जो हमारे वातावरण से प्रकाश लेकर के रेटिना पर चित्र बनाती है। और आंखें केवल देखने का काम ही नहीं करती, बल्कि ये हमारी खुशी, दुख और गुस्से जैसी भावनाओं को भी बिना कुछ कहे बयां कर देती है। लेकिन सखियों, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस रंग बिरंगी दुनिया को किसी कारणवश देख नहीं सकते। उन्हीं व्यक्तियों को हम आंखें दान करके उन्हें नवजीवन व सुंदर प्रकृति को देखने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए सखियों, विश्व नेत्रदान दिवस हर साल 10 जून यानी आज मनाया जाता है। नेत्रदान की और अधिक जानकारी के लिए सखियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भेंट वार्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं फेको सर्जन डॉक्टर प्रियंका पारधी मैडम से, नेत्रदान महादान पर चर्चा। तो चलिए सखियों, आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। मैडम नमस्कार। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने विषय लिया है नेत्रदान महादान, तो हम आपसे जानना चाहेंगे विश्व नेत्रदान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: नमस्कार। जैसा कि दीदी ने अभी बताया, नेत्रदान दिवस प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है। ये मुख्यतः नेत्रहीन लोगों को जीवन का उपहार, यानी कि रोशनी का उपहार देने के लिए और मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
0: मैडम, नेत्रदान कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, नेत्रदान हर कोई कर

0: सकता है। इसमें ना उम्र का बंधन है, ना किसी जाति का, धर्म का बंधन है। और सिर्फ इसमें यह है कि अगर आप किसी बीमारियों से, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है आपको, एड्स है जो ब्लड से फैलती है, ऐसी बीमारियाँ, या आप कैंसर से पीड़ित हैं, तो बस इन्हीं केसेस में आप नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। देखिए, नेत्रदान इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया में जो अंधत्व है उसका 1/5 यानी करीब 20% अंधत्व भारत में है। और इसमें भी जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, लगभग 4 से 5 मिलियन लोगों में से 1 से 1.5 मिलियन लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, जो कि नेत्रदान से ठीक हो सकता है। और इसमें भी हर साल करीब 10 से 20 हज़ार लोग और जुड़ते जा रहे हैं, है ना। तो आप अगर नेत्रदान कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की आँख 2 लोगों के लिए, जब कॉर्निया प्रत्यारोपण पूरी तरीके से किया जाता है तब, और आजकल तो कॉर्निया प्रत्यारोपण में कुछ कुछ हिस्सों का ही प्रत्यारोपण किया जाता है, तो ऐसे केसेस में इवन आप 3 से 4 लोगों के लिए जीवन का उपहार लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है।
1: मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई है, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि नेत्रदान की समय सीमा क्या है और इसकी प्रक्रिया कैसी होती है।
0: देखिए, ये बहुत ही सरल सी चीज़ है। आप अपने जीवित रहते हुए आपने एक फॉर्म भरना होता है नेत्रदान का, जो कि आप ऑनलाइन भर सकते हैं या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या किसी आई बैंक में जाके आप भर सकते हैं। ebai.org करके जो साइट है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, उस पर ऑनलाइन ये फॉर्म हमेशा उपलब्ध रहता है। तो आपको जस्ट कुछ आपको जानकारी उसमें प्रोवाइड करनी है, आपका आधार नंबर वगैरह से सिंपल सी जानकारी होती है, और आपने नेत्रदान किया है, ये आप अपने परिवार के किसी अपने व्यक्ति को बता दीजिएगा, पास के व्यक्ति को, ताकि आपके मरणोपरांत, आपके कभी भी जीवित रहते हुए आपकी आंखें नहीं निकाली जाती, आपके मरणोपरांत ही ये निकाली जाती है। और ये भी तब निकाली जाती है जब आपके परिवार का कोई व्यक्ति, पास के जो भी नेत्र बैंक हो, आई बैंक जिसे हम कहते हैं, उनको सूचित करें। आप अगर नहीं जानते कि कहाँ आई बैंक है, तो 1919 पे आप कॉल करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको आपके पास वाले आई बैंक का पता देंगे। वहाँ से टीम आएगी, या तो वो जो टेक्नीशियन रहेंगे वो रहेंगे, या डॉक्टर्स रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और नेत्रदान जिनका करना है, 4 से 6 घंटे के भीतर अगर उनकी आंखें निकाली जाए तो ही काम में आती है, अदरवाइज नहीं आती है। तो आपने जल्द से जल्द सूचित करना है टीम को, ताकि टीम पहुंच पाए। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आंखों को मॉइस्चर बना रहे, इसलिए आप थोड़ा सा ढक के रखिएगा। फ़ैन अगर ऑन है तो उस रूम में फ़ैन ऑफ़ कर दीजिएगा। एसी अगर प्रावधान है तो एसी ऑन करके रखिए। टीम आएगी मात्र 10 से 15 मिनट में, वो आँख निकाल लेती है। और एक और सबसे बड़ी इस में जो मिथक है कि नेत्रदान के बाद में व्यक्ति का चेहरा बिगड़ जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल चेहरा जैसा है वैसे ही रहता है। वो जस्ट एक पूरा आईबॉल निकालेंगे या कॉर्निया निकालेंगे, बाकी ऊपर की पलक वैसे ही रहती है, तो चेहरे में कोई बिगाड़ नहीं आता है।
1: मैडम, जैसे कि आपने कॉर्निया प्रत्यारोपण है ना, तो ये क्या है?
0: कॉर्निया यानी नेत्रपटल, जो अगर हम मराठी में जिसको बुबुड़ कहते हैं या हिंदी में पुतली कहते हैं, जो काला हिस्सा जो हमको दिखता है, एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट परत होती है जो पीछे जो आइरिस होता है उसकी वजह से इसको कलर मिलता है। तो प्रत्यारोपण में सिर्फ इतना ही हिस्सा यूज़ होता है।
1: प्रत्यारोपण के बाद कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए?
0: देखिए, प्रत्यारोपण एक जो प्रक्रिया है, जिस हॉस्पिटल में भी हुई है वहाँ पर जो भी कॉर्निया स्पेशलिस्ट रहेंगे वो आपको समय समय पर बुलाते हैं, क्योंकि जैसे बाकी अंगों की तरह कॉर्निया में भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अगले व्यक्ति ने किडनी प्रत्यारोपित हुई अगले व्यक्ति में, और कई बार किडनी रिजेक्ट होती, उस तरीके से कॉर्निया में भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। बस इसमें रिजेक्शन की संभावना थोड़ी कम होती है, तो आपको दवाइयाँ प्रॉपर डालनी होती है, आपको जो भी डॉक्टर सावधानियाँ बताते हैं, जैसे आपको हमें पानी नहीं जाने देना, समय समय से ड्रॉप्स डालना और समय समय से चेकअप, ये सिंपल सी सावधानियाँ आपको बरतनी होती है।
1: मैडम, अभी कार्यक्रम महिला जगत के माध्यम से आपको बहुत सारी श्रोता सखियाँ सुन रही हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे?
0: देखिए, क्योंकि बात चल रही है नेत्रदान दिवस की, तो मैं इसी बारे में बोलना चाहूँगी कि नेत्रदान एक बहुत

0: बड़ा दान है जो जो आपको प्रकृति ने दिया है, वो प्रकृति को लौटाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो मैं कहूँगी कि एक नेत्रदान महादान है, जैसे आप रक्तदान करते हैं उसी तरीके से नेत्रदान है। और ये तो आपके मरणोपरांत हो रहा है ना, और आपकी आपकी वजह से, एक व्यक्ति की वजह से अगर दो व्यक्तियों को अगर रोशनी मिल रही है तो ये सबसे बड़ा उपहार है।
1: मैडम, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता नेत्रदान महादान विषय पर। नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं फेको सर्जन डॉक्टर प्रियंका पारधी बारंगे मैडम से, जिसमें प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की थी। और अब सुन लेते हैं सखियों एक प्यारा सा गीत ओम शांति ओम फिल्म से।

सखियों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें हम चलते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर। सखियों, मान

मानव इतिहास और दैनिक जीवन में पेन यानी कलम का महत्व अमूल्य है। यह हमारे विचारों को शब्दों में ढालने, अपने ज्ञान को सहजने और दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। इसे तलवार से भी अधिक ताकतवर माना जाता है, क्योंकि एक पेन के स्याही के निशान से बड़े बड़े समझौते, कानून और क्रांतियां लिखी जाती है। सखियों, पेन एक आवश्यक लेखन उपकरण है जिसका उपयोग स्याही लगाकर कागज या अन्य सतहों पर लिखने या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। पेन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, जेल पेन और मार्कर, और इनका चुनाव आपकी लेखन शैली पर निर्भर करता है। लेकिन सखियों, आप सोच रही होंगी कि हम पेन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें सखियों कि हर साल आज ही के दिन 10 जून को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बॉल पॉइंट पेन दिवस। यह दिन 10 जून 1943 को हंगेरियन आविष्कारक लास्ज़लो बीरो द्वारा बॉल पॉइंट पेन के पेटेंट का याद दिलाने और लेखन की दुनिया में इस क्रांतिकारी उपकरण के सम्मान में मनाया जाता है। सखियों, आपको इसके आविष्कार के बारे में बताएं तो 1938 में हंगेरियन पत्रकार ने अपने भाई ग्योर्गी के साथ मिलकर बॉल पॉइंट पेन का पहला सफल संस्करण बनाया। उन्होंने समाचार पत्रों की जल्दी सूखने वाली स्याही से प्रेरित होकर पेन से एक छोटी सी घूमने वाली गेंद बॉल का इस्तेमाल किया। लास्ज़लो बीरो को 10 जून 1943 को इसका पेटेंट मिला, जिसके बाद यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया और इस बॉल पेन या बॉल पॉइंट पेन को आम बोलचाल की भाषा में डॉट पेन भी कहा जाता है। और इसी चर्चा के साथ चलियो सखियों, हम एक और गीत सुन लेते हैं।

तराना फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ सखियों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम कल फिर मिलेंगे कार्यक्रम महिला जगत का एक नया अंक लेकर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो सखी नीतू दांद्रे को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 9 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। अंग्रेजी में कहते हैं, इस फिल्म का गाना शान की आवाज में, गीत को लिखा योगेश ने, संगीत है प्रवीण कुंवर का।

दोस्तों, आज सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंग्रेजी में से कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। प्रतिवर्ष 10 जून को ये दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, वैश्विक एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न सभ्यताओं की विविधता के सम्मान, समान संवाद और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बातचीत के महत्व को उजागर करता है और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है और दुनिया में शांति व साझा विकास बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गाना राज रिबूट, इस फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग का लिखा हुआ गाना, जीत गांगुली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दो लफ्जों की कहानी। इस फिल्म का गाना कनिका कपूर की आवाज, कुमार के बोल हैं और अर्जुन का संगीत है।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमेश रेशमिया, शान कुणाल गांजावाला और अमृता काग की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना। हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम है अपने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

एक पहेली लीला, ये फिल्म का नाम है। मीत ब्रदर्स अनजान और कृष्णा की आवाज़ें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन ग्रैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
3: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
2: क्या तकते हो?
3: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान अली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मारा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूँ।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है।

0: में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
1: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
2: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
1: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें, उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
0: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पॉर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वारे जमाने, कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडव को जीत कर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा आशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो।

0: फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
1: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रका की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरजू पूरी हो।
2: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
0: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर, वास्ती पहाड़ी सान्याल, बेमिसाल गीता बाली, मधुबाला सुरैया, लाजवाब नरगिस, मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के किरदार कर रहा हूँ।
2: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज, शर्मिला टैगोर, बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता अपने के मुकाबले में कर चुका हूं। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने की कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूं तो वो मुझे बदमाश, कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकिचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो, लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
3: मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी?
4: पत्ता महेश, जूता खराब कर दिया, साफ करो।
3: मेरी बेटी कहाँ?
4: बैठे, कौन सा बेटे?
3: उस राज्य से तुम उठा कर ले गए थे।
4: हमें कुछ याद नहीं।
3: याद करो, प्लीज याद करो।
4: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
3: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
4: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ और तुम मेरे कदमों में।
3: मुझे सिर्फ इतना बदला दो।

मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर प्राण भी मुझसे ना बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस एम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर, वही खामिन ललिता बाई का है, और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल, जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में, मणिमाल के बदले गले में विषधर को

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: वो ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली
2: देहाती हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब्बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दो ला, नहा धो के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
2: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
2: धुत, अरे वही बसंती।
1: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
2: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: आग में तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गए। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब
3: है? अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़।

0: भी नहीं जाता।
1: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
2: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
3: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
4: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बूद। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।

0: न हो।
1: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
2: दोस्तों, बात बाहर ना जाए। मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिर कर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाए। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
3: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

पारा 43 से 44 डिग्री होने के बाद अब तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो रही है, तो वहीं गर्म हवाओं की जगह धीरे धीरे उमस अपना स्थान ले रही है। खेती के नजरिए से ग्रीष्मकालीन मूंग खेतों में तैयार होकर अंतिम दौर में है, वहीं किसान कटाई की तैयारी में नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र के लिए ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन जारी है। उप संचालक कृषि मोरिस नाथ ने बताया कि मूंग और उड़द के लिए तहसीलवार कुल 46 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मूंग के 13,000 से अधिक, उड़द के लिए 14,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। जिले में किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति का आकलन करने हेतु व्यापक स्तर पर मृदा नमूना संग्रहण कार्य किया गया है। नरसिंहपुर जिले में कुल 4,400 मृदा नमूने संग्रहित किए गए हैं। मृदा परीक्षण के माध्यम से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन कर किसानों को उनकी भूमि के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह प्रदान की जाती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले से प्रदेश के 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में योजना की 36वीं किस्त के रूप में 1835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 296.34 करोड़ रुपए लागत के 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान नरसिंह की ये भूमि वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम की साक्षी रही है। नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। वहीं गाडरवारा की तुअर दाल देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। पिछले दिनों नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित जल संवाद कार्यशाला में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वैश्विक जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए भूजल भरण की विशिष्ट तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। पिछले दिनों पीएम श्री शासकीय कन्या नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काटरवारा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धरती का आंचल हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि एक यादगार पल है और एक मौका भी है। आज के दिन हम संकल्प लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा जरूर लगाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मानवाधिकारों से जुड़ी योजनाओं क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीयन शिविर का आयोजन नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर में किया गया। शिविर में 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों को योजना में पंजीयन कर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है।

पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अभिनव पहल पर जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के माध्यम से जिले के विकास से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, स्वावलंबन और अधिकारों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, स्टोर रूम, मदर रेस्ट रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड 101.3 MHz पर। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

हमराज। इस फिल्म का गीत आप अभी सुन रहे थे, सोनू निगम और सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ें थीं। संगीत हिमेश रेशमिया का था और इस गीत को हमने लिया था हमराज फिल्म से। आइए कार्यक्रम के अगले क्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत। इसमें आवाज़ें आप सुनेंगे अमित कुमार, उदित नारायण, सोनू निगम और साथियों की। समीर के बोल हैं और जतिन ललित का संगीत इस गीत में आप सुनेंगे। आइए सुने कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गाना।

कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत में आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण, सोनू निगम और साथियों की थी। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल ले रहे हैं। अंतराल के बाद हम लौटेंगे तो आपको सुनवाएंगे प्यार का मंदिर फिल्म का गाना। बने रहिए हमारे साथ।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अंतराल के बाद श्रोताओं, एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अपने वादे के मुताबिक प्यार का मंदिर फिल्म का गाना। आवाज़ें आप सुनेंगे किशोर कुमार और अलका याग्निक की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: Epistle.
1: Epistle.

श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। कार्यक्रम के अगले क्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं चरणों की सौगंध, इस फिल्म का गीत।

चरणों की सौगंध इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: आज अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: है। फिर क्या होता है,
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान

0: मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
0: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
0: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
0: जी।
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
0: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए। आज की ही जानकारी से तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता

0: भी हैं जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहाँ घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
1: ओ।
2: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई

0: 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
1: जी।
2: अच्छा,
0: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
1: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
2: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
0: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
1: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
2: अच्छा।
1: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
2: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके,

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली हैं।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर

0: भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटपना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुंचती है।
0: अच्छा।
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से।

0: हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम।
5: पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको लकी अली की आवाज, शब्द रचना भी इन्हीं की और संगीत भी लकी अली का। एल्बम का नाम अक्स।

0: जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थे धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो।
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए अलीशा चिनॉय को। डांस डांस इस एल्बम का नाम है, अनजान के बोल है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

आइए सिफर एल्बम का गीत आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में। इससे संगीत से सजाया है लकी अली ने और लिखा है सईद असलम ने।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान।

0: 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं पॉप एल्बम का ये गीत, आवाज गुल सक्सेना की और किरण ने साथ दिया है। गीत और संगीत किरण, प्रगति तोमर और सौरभ ठाकुर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा

0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: अविनाश कुमार, अभिषेक शुक्ला की आवाजों में अभी आपने सुना, इन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत और रचना भी थी इन्हीं की। और आपको अगला गीत सुनवाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए, फिल्म का नाम सात खून माफ, उषा उत्थप और रेखा

0: भारद्वाज की आवाजें, गुलजार के बोल और धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।
1: आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग, आंखों से

साथ खून माफ इस फिल्म के इस गीत के साथ ही रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4300

0: 99 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि

भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं ना कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी मुखर्जी ने, देव कोहली की रचना, जगदीश जे का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: कलाकार फिल्म का गीत आपने सुना, सुरेश वाडकर की आवाज में इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर। मुकेश के स्वर, शकील बदायूनी की रचना और नौशाद अली का संगीत।

0: सुरैया की आवाज में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूनी की थी और नौशाद अली का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं

0: से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
1: क्या
0: जैसे
1: बात है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

0: are you?
1: कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम, अलका याग्निक और करीना कपूर की आवाज़ों में। संगीत संदेश शांडुल्य का था और गीत समीर का था। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। समय हो चला है इस घंटे की खास खबरों का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने की बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। उद्योगपतियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं। मैं आपका दोस्त जावेद इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। सामेईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में महफिल समा सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे फ़र्द की ज़िंदगी में तौबा की अहमियत मौजू पर, और साथ ही लुत्फ़ानंदोज़ होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की कव्वालियों से। दोस्तों, किसी बर्तन में कोई अच्छी चीज़ डालने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए और उसमें कोई गंदगी बाकी न रहे। इंसान का दिल भी एक बर्तन की तरह है, जिसकी इस्लाह से इंसान का पूरा वजूद सालेहियत के सांचे में ढल जाता है और जिसके बिगाड़ से उसका पूरा वजूद बिगाड़ का शिकार हो जाता है। जैसे ज़ाहिरी गंदगी और मैल कुचैल से इंसान का जिस्म और उसका लिबास गंदा हो जाता है, इसी तरह गुनाह भी एक रूहानी गंदगी है जो कल्ब के पैमाने को नापाक और गंदा कर देता है, और इसको साफ़ करने का तरीक़ा तौबा है। परवरदिगार की शान करीमी है कि इंसान कितना भी बड़ा गुनाह करे, तौबा से गुनाह का दाग धुल जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स कुफ्र व शिर्क में मुब्तिला हो और वो उससे तायब हो जाए, तब भी उसको अपने जुर्म से मुआफ़ी मिल जाती है। दरअसल इंसान खैर व शर का मजमुआ है, ये नेकियों पर कादिर है लेकिन बुराइयों से आजिज़ है।
1: उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूँकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
2: जी रेडियो से और आकाशवाणी से, और विविध भारती से रिश्ता है ही।
1: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियाँ हैं, पूरा गोल्डन जुबली
2: विविध भारती से
1: की स्मृतियाँ हैं मेरे
2: जी
1: पास।
2: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
1: जी।
2: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
1: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
2: जी,
1: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
2: जी।
1: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
2: जी।
1: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
2: जी जी जी।
1: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहाँ खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहाँ से चला जाता था।
2: क्या बात है।
1: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
2: अरे वाह,
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे,
2: गजब,
1: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
2: जी।
1: तो, या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है
2: जी जी।

हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कहकशा।

0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है। एक आदमी है फिराक गोरखपुरी, जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है।
1: जी
0: अकबर इलाहाबादी, जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है। सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं।
1: जी
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूं, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था, तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था।
1: जी
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है? एक असर होता है परिवार का। तो मेरे
1: जी जी
0: परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा
0: मैं टिपिकल, जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर
1: संबंध
0: दूर
1: नहीं
0: से
1: होता है।
0: रिश्ता
1: जी
0: नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है, वो भी चीजें गढ़ता है। तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूं।
1: जी जी क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी, परी के वरदान।
1: जी
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा
1: हाँ
0: तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी
1: 3 पेज
0: और
1: की
0: तीन पेज
1: चिट्ठी
0: की चिट्ठी।
1: सर्वेश्वर जी के
0: और हाँ,
1: पास।
0: उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा, पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे। आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा।
1: लिख
0: और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने सब लिख
1: डाला।
0: दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया। वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे, वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई। बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने
1: प्रयास
0: इतनी कम
1: किया।
0: कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है।
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहां रहा हूं,
1: हाँ
0: तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है, तो
1: कि
0: वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और
1: हाँ
0: कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना, तो जब मुझे भेजना, तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूं जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है।
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा, चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है, तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे

0: घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
1: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
0: ये
1: प्रस्तुति थी।
0: प्रस्तुति
1: तो मुझसे कह रहे हैं, तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला, ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला, अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। किस बोले, अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा, नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना, अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा,
0: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे बड़ी
1: चलेगी।
0: सोच।
1: तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं करते हों, और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बस मेरी भी, जैसे आपने कहा, यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
0: जी
1: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने। हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए, अपने को एक्सप्रेस करते करते
0: जी,
1: वो एक गवैया बन जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
1: 3 लाइनों में बात कहता हूं कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं। पहली
0: अच्छा।
1: नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा, वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी। मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक। और शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूं। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूं। बोला अच्छा, तुम केयर ऑफ हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूं। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप, ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
0: ओह।

0: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक
1: हाँ,
0: ओहदे
1: जो
0: पर हैं।
1: कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15, 10-15, 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रूमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी।
0: जी
1: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रहीं छपती रहीं। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं, लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रूमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं।
0: क्या
1: फिर बाद की
0: बात
1: जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
0: जी,
1: जी,
0: तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
1: संग्रह

0: उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया, और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा, और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी
0: यार, जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई, वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc Part 1 में रहा हूंगा, तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी, आप अगर सुनाए हमारे
0: हाँ,
1: को तो 4 लाइन।
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओह गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है।

0: का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो,
1: वाह वाह
0: अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह
0: बहना का
1: शेष कुशल।
0: संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है,
0: आखिरी
1: बहुत।
0: बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं,
1: वाह
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे।
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये में
1: चीज,
0: धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप।
0: मशहूर
1: तो
0: रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था, तो व्यंग्य में एक खूबी होती थी, व्यंग्य में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग्य नहीं
0: अनकहा
1: उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा।
0: कहता।
1: तो
0: हाँ,
1: एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है, कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए,
0: जी
1: तुमने पाया हमने खोया। अब
0: जी
1: अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह
1: तो
0: वाह।
1: अब ये जो खूबसूरती थी, इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी जी
1: तो हम
0: जी
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
0: जी जी
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो, और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। गागर में सागर
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया,
0: जी
1: सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए,
0: जी
1: उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े। नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक
1: हाँ
0: जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनूदित हुआ, इसके
1: जी,
0: बारे में बताइए, इसकी
1: देखिए
0: क्या
1: नाटक
0: कहानी
1: क्या
0: है।
1: था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो,
0: जनसत्ता के संपादक थे उस
1: हाँ, तो
0: समय।
1: मैं
0: जी
1: जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
0: जी
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूं। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं, मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो

0: इतने अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे,
1: जी।
0: एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी। ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है, तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था
1: अच्छा
0: कि मैंने कि लंबी कविता में लिखूंगा। 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूं कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो,
1: हाँ बिल्कुल, ये तो
0: इसका
1: जुमला
0: मतलब कि
1: है।
0: दूसरा आदमी
1: हाँ
0: उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है,
1: जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी
1: हाँ
0: सीधी बात आ गई है,
1: जी,
0: नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया
1: हाँ।
0: और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा।
1: जी
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी,
1: हाँ
0: उनका आशीष था
1: जी।
0: कि नाटक संयोग से, दुर्योग से, जैसे भी था, वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को, महिला दिवस के दिन उसका मंचन था,
1: जी।
0: और 2 घंटे का शो, और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं, और
1: जी।
0: तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे,
1: बड़े
0: उन्होंने
1: कलाकार
0: कहा मैं
1: जी।
0: काम
1: कहाँ पर
0: किया
1: था, किस हॉल में?
0: वेदा कुंभा थिएटर में,
1: अरे वाह,
0: अंधेरी
1: क्या
0: में।
1: बात
0: हाँ
1: है, बहुत सुंदर थिएटर है वो
0: हाँ
1: तो। ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी,
1: हुआ है
0: नौ
1: ना,
0: भाषाओं में अब तक
1: जिसमें
0: ये
1: मराठी में भी है।
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी,
0: इसकी, और
1: तो
0: कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है, थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई
0: बंद
1: नाम,
0: कमरे, अलोई, जो
1: लोई नामकरण कैसे किया,
0: कबीर की
1: मतलब
0: पत्नी
1: किसने?
0: है, उनका नाम है।
1: जी, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी
1: जिंदगी
0: धूप
1: धूप तुम घना साया,
0: घना साया।
1: साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह
0: जी,
1: की आवाज है, और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी, क्या बात है। तो
0: हाँ
1: ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है
0: हाँ
1: इस बात से।

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा,
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश से नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके

0: पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफ जई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो वो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
1: जी
0: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
1: क्या बात है, वाह।
0: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह
1: वाह
0: वाह। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह
1: वाह
0: वाह वाह
1: वा,
0: जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
1: वाह।
0: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे।
1: क्या बात
0: जो
1: है?
0: न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20-30 ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
1: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहें तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे, एक माँ, एक खबर।
1: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए?
1: हाँ।
0: पान खाएं सैया हमार।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए,
0: मतलब
1: मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: जी
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात है,
1: तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहें तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी,
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बनाकर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बनाकर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब
0: जी
1: हांट करता है या उससे पहले ही। हाँ,
0: जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहां आपका
1: क्योंकि
0: बचपन
1: आपको
0: बीता।
1: लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है,
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: देखिए,
0: पहुंचे?
1: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों

0: तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके, किसी
1: जी
0: के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं,
1: जी जी
0: वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
1: बिल्कुल
0: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
1: जी। तो यहां भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको
0: नहीं नहीं
1: या
0: उन्होंने
1: यहां
0: मना किया, हमको उस
1: सकारात्मक
0: समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो वो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
1: जी
0: हमने क्या कर उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे, तो हम उनको बताए कि हम खा कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
1: कुछ करने
0: हम
1: आए हैं
0: लगाने आए हैं,
1: जी,
0: हम
1: बिल्कुल
0: कुछ
1: क्या बात
0: बोने
1: है।
0: आए हैं, हम कुछ
1: सृजन
0: सृजन
1: करने
0: करने
1: आए
0: आए
1: हैं
0: हैं,
1: जी।
0: तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास, तो
1: नजरिया
0: अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे
0: पहली
1: क्या
0: बार
1: थी सीढ़ी आपका?
0: हम देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा, तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया,
1: जी।
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना,
1: जी,
0: उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा, मैं
1: इलाहाबाद के।
0: अकेला ही पीर बावर्ची भिस्ती खर था उनके साथ,
1: जी
0: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा,
1: जी
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा,
1: क्या
0: न्यूज़
1: बात है।
0: एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ, तो एक टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सकें नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व तो है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं इसलिए हम उत्सव करते हैं,
1: जी
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव हैं ये आयोजक के उत्सव होते हैं,
1: जी
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता, वो उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है,
1: जी
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां,
1: जी
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं इस उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी।
1: जी, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए
0: बिल्कुल,
1: आप
0: बहुत जरूरी
1: क्या
0: है,
1: करना चाहते हैं
0: सबसे बड़ी
1: पत्रकारिता
0: चीज
1: का?
0: है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है
1: बिल्कुल
0: या बहुत बेहतर रचा गया है, बेहतर आपके सामने नहीं आया तो

0: इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: कविता माने कविता नहीं रही
1: जी, जी।
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है, हाँ। तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे।
1: जी, तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
0: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
1: बिल्कुल
0: ठीक है,
1: सही
0: तो आप वो
1: है।
0: जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
1: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपका जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुशी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों को। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: श्रोताओं और दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम का रोजाना का अंक आपको सामान्य ज्ञान में इजाफा करता है, जानकारियों से जोड़ता है, साथ ही आपको हम सुमधुर गीतों को सुनवाते हैं। ये सिलसिला आज भी है जारी। दोस्तों, अब हम कार्यक्रम युवाणी में आपको क्रम सवाल जवाब से जोड़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण कब मिला? कावेरी, तीसरा प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? प्रश्न क्रमांक 4 है, NEP 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? और क्रम सवाल जवाब में अंतिम प्रश्न है 5वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद आई? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस सुमधुर गीत के बाद।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: सतपुड़ा अंचल की वादियों में गूंजती आपकी अपनी आवाज,
3: आकाशवाणी बालाघाट।
2: शिक्षा, सूचना और मनोरंजन की त्रिवेणी,
3: हर पल हर दम आपके साथ, यूं ही बना रहे आपका।

0: हमारा साथ।
1: रोजाना सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट। करनी हो तरक्की, बढ़ाना हो व्यापार, तो आकाशवाणी बालाघाट से कराओ प्रचार प्रसार।
0: आकाशवाणी बालाघाट सदैव आपके विकास में अग्रणी।
2: दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। और हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे और उसके जवाब हम गीत के बाद देने का आपसे वादा किया था। तो चलिए अब उन सवालों को लेते हैं और जवाब भी हम देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब है 21 जून को। प्रश्न दूसरा था हमारा, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण कब मिला, जवाब है मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 में और 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मिथुन दा ने 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है एवं इन्हें महागुरु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल था, कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है, जिसका जवाब है कर्नाटक राज्य में। सवाल चौथा था हमारा, जो हमने आपसे पूछा था, जिसका हम जवाब आपको दे रहे हैं। सवाल हम पहले फिर बता दें, NEP 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था, जवाब है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये इसरो के पूर्व प्रमुख और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। हमारा अंतिम और पांचवा प्रश्न हमने शामिल किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद आई, जिसका जवाब है 34 वर्षों के बाद। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी मिली। तो दोस्तों, ये क्रम था हमारा सवाल जवाब।

दोस्तों आप सुनिए ये रोजगार सूचना। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 रिक्त पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन 14 जून 2026 तक आमंत्रित किए हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल में सर्च कर देख सकते हैं। आपको लिखना होगा रेलवे भर्ती बोर्ड 2026 असिस्टेंट लोको पायलट की जानकारी। तो दोस्तों ये थी रोजगार सूचना।

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम युवाणी। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का शुरुआती गीत आपने सुना डॉन फिल्म से, आवाज़ें दी थी किशोर कुमार और साथियों ने, गीत था अनजान का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक बार फिर अनजान का लिखा गीत। बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में युगल स्वर दिया है अमित कुमार और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन।

0: श्रोताओं, ये गीत था अनजान का, लिखा बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में, युगल स्वर दिया था अमित कुमार और अलका याग्निक ने, फिल्म का नाम था आज का अर्जुन। श्रोताओं, गीत में 3:30 बजे का जिक्र हो रहा था, परंतु हमारे स्टूडियो की घड़ी में अभी 5:43 और 33 सेकंड हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का। अब हम आपको सुनवाते हैं प्यार का देवता फिल्म का ये गीत, आवाज़ दी है सुदेश भोसले ने।
1: ओ मेरी पान सुपारी, अरे रुक जा मेरी जान।
2: अरे देखो, अरे देखो, कादर खान,
1: कादर खान, अरे मैं तो तेरा प्रीत

श्रोताओं, सुदेश भोसले और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे प्यार का देवता फिल्म का गीत। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का सफ़र आप तय कर रहे हैं आशीष सेंद्री के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पन्हा फिल्म का गीत। सुरों से संवारा था कुमार सानू और साधना सरगम ने, बोल लिखे थे समीर ने, संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, ये गीत है मन फिल्म से, आवाज से दी है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत है समीर का, संगीत संजीव दर्शन का।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। श्रोताओं, शाम के 6 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट।

0: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट,
1: श्रोताओं नमस्कार। इस सुहानी सांझ में गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम के नए अंक के साथ आज मैं हूं आशीष सिंद्रे। सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम में हम रोज़ाना आपको कुछ जानकारी देते हुए सुमधुर गीतों को उससे जोड़ते हुए सुनवाते हैं। ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। अभी है एक गीत की बारी।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
2: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
1: और ग्रीन एनर्जी पाएं
2: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
1: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस,
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
1: और चले आएं ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर, काली पुतली चौक, मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 8770854830,
1: 7581938175।
3: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
4: एक चाबी है CKYC ID।
3: CKYC मतलब?
4: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
3: वाह, RBI कहता है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
5: श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट में। श्रोताओं, आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन की जयंती। जीवन का जन्म 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुआ था और 10 जून 1987 को निधन हुआ था। जीवन का असली नाम ओंकार नाथ धर था और फिल्मी नाम जीवन। जीवन का फिल्मी करियर की शुरुआत 1935 में आई फिल्म फैशनेबल इंडिया से हुई। उस जमाने में जीवन ने 60 रुपये महीने पर स्टूडियो में काम शुरू किया। जीवन हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायकों में से एक हैं, जो कि 1950 से 1970 के दशक में विलेन के रोल के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट से कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट, और हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन की। जी हाँ श्रोताओं, आज इनकी जयंती है। कुछ चर्चा हमने संदेशों और गीत से पहले की थी, और कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जीवन का खास अंदाज, आँखों से घूरना, कंधे हिलाना और ठहाका लगाकर हंसना इनकी पहचान थी। अन्नदाता फिल्म में नारद मुनि का रोल तो अमर हो गया, नारायण नारायण बोलने का स्टाइल आज भी काफी होता है। जीवन की प्रमुख फिल्में हैं 1977 में अमर अकबर एंथनी, 1970 में जॉनी मेरा नाम, 1954 में नागिन, 1975 में शोले और धर्मात्मा, 1981 में लावारिस, 1972 में अन्नदाता। जीवन ज़्यादातर फिल्मों में विलेन बने, लेकिन अन्नदाता में नारद मुनि और खानदान में पॉजिटिव रोल भी किए। अभी हम आपको सुनवा रहे हैं जीवन की एक और फिल्म धर्मात्मा का ये गीत।

श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे थे फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता जीवन की। आज इनकी जयंती है। जीवन फिल्मों में विलेन बनकर ही घर घर मशहूर हुए। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जीवन साहब के बिना 1970 के दशक की फिल्में अधूरी है। हम सुप्रसिद्ध अभिनेता जीवन को सादर नमन करते हैं। उन्हीं की फिल्म अमर अकबर एंथोनी के इस गीत से।

0: श्रोताओं, आज ही है फिल्म निर्देशक गिरीश कर्नाड की जयंती। जन्म हुआ 19 मई 1938 माथेरान महाराष्ट्र में और मृत्यु 10 जून 2019 को बेंगलुरु में हुई। गिरीश प्रसिद्ध नाटककार, अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में काम किया। प्रमुख निर्देशित फिल्में थी उत्सव और चेलवी थी। गिरीश कर्नाड ने फिल्म निर्देशक के साथ साथ मंथन, निशांत, इकबाल, टाइगर जिंदा है, शिवाय जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया। गिरीश को 1998 में कन्नड़ साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण। आपने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। गिरीश कर्नाड ने फिल्मों के जरिए भारतीय रंगमंच और लोक कथाओं को पर्दे पर उतारा। इनकी फिल्म उत्सव में रेखा, शेखर सुमन और अमजद खान थे। हम गिरीश कर्नाड जी की जयंती पर सादर नमन करते हैं। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। अब इस कार्यक्रम से आशीष सेंद्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।
0: गुड इवनिंग बालाघाट। श्रोताओं, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को लेकर आज मैं हाजिर हूँ, आशीष सेंद्रे। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अगम कुमार निगम के गाए कुछ गर्भिणी गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी पयाम सईदी की शब्द रचना। सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं अगम कुमार निगम के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। हम आपको ये भी बताते चलें कि सभी गैर फिल्मी गीतों में संगीत से संवारा है निखिल विनय ने। अब सुनते हैं असद अजमेरी की शब्द रचना।

श्रोताओं, ये शब्द रचना थी असद अजमेरी की। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। अब सुनते हैं योगेश की शब्द रचना। और श्रोताओं, हमने आपको बता ही दिया है कि आज ये कार्यक्रम सजा है अगम कुमार निगम की आवाज़ से।

श्रोताओं, ये शब्द रचना थी योगेश की। कार्यक्रम का हम समापन कर रहे हैं एमपी अनामिका की इस शब्द रचना से। आवाज़ दी है अगम कुमार निगम ने, संगीत तैयार किया है निखिल विनय ने।

श्रोताओं, ये था आज का हमारा कार्यक्रम सुगम संगीत। आज हमने इस कार्यक्रम में आपको सुनवाया अगम कुमार निगम के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। अब सुनिए आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र अंग्रेजी समाचारों के लिए। 7:10 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार दिए जाएंगे, हम रिले करेंगे। 7:21 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 7:30 पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 8:30 पर पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि पॉप म्यूजिक के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे नितिन बाली के गाए कुछ पॉप सॉन्ग। 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई की कार्यक्रम। रात 10:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 11:10 पर हमारी प्रसारण सभा समाप्त होगी। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी बालाघाट है। 7:05 होने जा रहे हैं। अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: education, digital economy, sports, entrepreneurship and fitness. As a result, India has emerged as a major sporting nation, one of the world's three largest startup ecosystems, and has demonstrated remarkable scientific capabilities through missions such as Chandrayaan.
1: Kshamta hamari desh ki is karyakal mein bahut badi hai.
2: Mr. Vaishnaw said the cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. He said the cabinet also approved central government office complex and central government residential complex in Amravati in Andhra Pradesh. The Defence Minister today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The government has approved extension and validity of the credit guarantee scheme for microfinance institutions 2.0 up to the 31st of August this year or till guarantees for an amount of 20,000 crore rupees are issued. The Ministry of Finance said that as on date, loans totaling to 770 crore rupees have been sanctioned under the scheme. The scheme aims to provide credit guarantee support through National Credit Guarantee Trustee Company Limited to strengthen lending of microfinance institutions and facilitate increased credit flow of up to 20,000 crore rupees to non-banking financial company microfinance institutions. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. India attracted cumulative foreign direct investment FDI inflows worth $843 billion between 2014-15 and 2025-26, registering a 169% increase over the previous 12-year period. According to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, India recorded a historic FDI inflow of over $94 billion in 2025-26 despite global economic uncertainties. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today visited the National Historical Museum at Sofia in Bulgaria. In a social media post, Dr. Jaishankar said he explored its remarkable collection of artifacts spanning millennia and gained a deeper appreciation of how Bulgaria has preserved the many facets of its rich history and cultural heritage. And in badminton, P.V. Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's Ines Castillo 21-13, 21-11 in the first round clash of the tournament. And that is the end of this news bulletin.
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। शाम को श्री मोदी ने भारत मंडपम में भाजपा एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के लालघाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व प्रार्थना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान हनुमान से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि
7: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और केवल यही नहीं, उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार इस देश का नेतृत्व करते रहे, इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम का हमने आयोजन।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार बैठक का विषय विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में समावेशी मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों, मानव पूंजी, रोजगार, स्वास्थ्य एवं पोषण और सभी के लिए समानता पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल विचार विमर्श करेंगे। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने आज ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद योजनाओं के तहत प्रदर्शित उत्पादों में रुचि दिखाई। रीवा के GI टैग प्राप्त सुंदरजा आम और अन्य किस्मों का स्वाद लेकर प्रतिनिधियों ने उनकी गुणवत्ता की सराहना की। मंडला की मिलेट क्वीन लहरीबाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। मृगनैनी, प्रकृत शिल्क, हेम्प क्लोदिंग के स्टॉलों पर प्रदर्शित पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की भी मेहमानों ने प्रशंसा की। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में कथित अनियमितताओं के आधार पर कल खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 10 वर्षों में रतलाम जिले में हजारों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्राप्त हुआ है। पेश है हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव पूर्ण जांच और सुरक्षित मातृत्व देने का अभियान रतलाम जिले में भी 10 साल पूरा कर चुका है। अब तक हजारों माताओं और नवजातों को इस योजना से नवजीवन मिला है। रतलाम के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% प्रसव पूर्ण जाँच का लक्ष्य सफलतापूर्ण हासिल भी किया जा रहा है। विशेषकर आदिवासी अंचल में समय रहते उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनके कार्ड पर लाल स्टीकर भी लगाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रसव के 45 दिन बाद तक निरंतर फॉलो अप और महीने की 9, 8 और 27 तारीख को महिलाओं को लैब टेस्ट पूरी तरह निशुल्क हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि पिछले 5 सालों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में अच्छी कमी आई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। इस खास मौके पर पेश है एक रिपोर्ट।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष

0: रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी कुल सचिवों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये नियम साल 2001 में लागू हुआ था, जिसके तहत 2 से ज़्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में नहीं रह सकेगा। जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच बन जाएगा, वहां से भी तबादला अनिवार्य होगा। वहीं 10 साल या उससे अधिक समय से एक ही पंचायत में जमे सचिवों को प्राथमिकता से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5,39,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 74,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। ये जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर तथा दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया के साथ पूजा अर्चना एवं कन्या पूजन किया। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत शहडोल जिले में जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों के पंजीयन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। मंदसौर में 132.67 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक जिला जेल के निर्माण को अंतिम स्वीकृति मिल गई है। समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल खंडवा में आयोजित की जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना परिसर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 50 ग्राम कोटवारों को पुलिस की कार्यप्रणाली, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। और कटनी में छात्रों की सुरक्षा एवं बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले की जर्जर एवं मरम्मत योग्य 82 शालाओं का कायाकल्प किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 7:21 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला गीत हमने चुना है दस्तक फिल्म से, आवाज़ दी है अभिजीत ने।

श्रोताओं, ये गीत था दस्तक फिल्म से, आवाज दी थी अभिजीत ने, संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि शब्दकार थे जावेद अख्तर। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और ये है कार्यक्रम का अगला गीत दरार फिल्म से। एक बार फिर आवाज़ अभिजीत की।

श्रोताओं, ये गीत था दरार फिल्म से और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत था। गीतकार थे राहत इंदौरी, संगीतकार अनु मलिक, आवाज से दी थी अभिजीत, साधना सरगम और साथियों ने। अब हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बालाघाट है। इस समय 7:30 होने जा रहे हैं। अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा।

नहरों, मौसम में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कृषि में कई बार भारी नुकसान उठाने पड़े थे। कई बार तो नुकसान इतना ज़्यादा होते कि किसान चाह के भी इसकी भूरी भरपाई नहीं कर सकते और हताश हो जाते। यही सब बातन को ध्यान में रखत भय केंद्र सरकार ने कृषि बीमा योजना संचालित करी है, जो कि किसानन को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल खराब होए पे वित्तीय सहायता प्रदान करत है। ईको मुख्य उद्देश्य किसान के ऊपर प्रीमियम को बोझ कम करवो और उकी आय को स्थिर बनाए रखो है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि आप सब जानत हो, सूख हो, बाढ़, जलभराव, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की तरह की प्राकृतिक विपदाओं से निपटे के लाने सरकार ई योजना के माध्यम से किसानन की मदद करत है। और ई योजना में भारत को कोनो भी किसान, चाहे वो बटाईदार होए, चाहे किराएदार किसान होए, या चाहे तो अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाउत होए, को भी ई योजना को लाभ ले सकत है। और किसान भैया रे ई के लाने आवेदन भी कर सकते हैं। और आवेदन करवे के लाने ने कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं सो हम बता देते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गओ, भूमि के दस्तावेज, खसरा खतौनी, सफल को फसल को प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की आवश्यकता ई के आवेदन के लाने जाने पड़ा थे। और किसान भैया अगर चाहें तो ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दो प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। जा तो हो गई बात अपनी अब चर्चा की और अब सुन लेते हैं लोकगीत। ये गाँव है नीता खरे ने।

0: किसान भैयाहरो, मानसून दस्तक देवे वारो है। इसे पहला के मानसून आए, हम अपने खेत की तैयारी कर लें, जिसे के आसानी से हम अपनी फसल को बो सकें। और आज की भेंट वार्ता जी को विषय है खरीफ फसल हेतु मिट्टी की तैयारी में सावधानियां, ए विषय से संबंधित है। जानकारी देवे वारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमर बहादुर सिंह। सुसुनत है जे भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, खरीफ की बुआई की तैयारी

0: खेतों में होने लगी है, लेकिन हमें जरूरत है कि मिट्टी की तैयारी पूर्व से करके रखें। और इसी विषय की और जानकारी के लिए आपके लिए लाए हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है खरीफ फसल हेतु मिट्टी की तैयारी में सावधानियां। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमर बहादुर सिंह, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक एवं निदेशक ICAR भारतीय मृदा संस्थान नवी बाग भोपाल से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खरीफ फसल की बुआई से पहले मिट्टी का प्रबंधन कैसे करें।
1: किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि खरीफ फसल की बुआई की तैयारी शुरू हो गई है, और बुआई के पहले किसान भाइयों को हमारे क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, आपको खरीफ की फसल की बुआई के पहले मिट्टी की तैयारी का विशेष ध्यान रखना होगा, और मिट्टी की तैयारी के साथ साथ कुछ और बातें हैं जो किसान भाइयों को हमारी खरीफ फसल में, जो भी आप सोयाबीन, मक्का, धान, जो भी फसल उगाते हैं, उसके लिए मिट्टी की तैयारी में और क्या क्या, जैसे जुताई कैसे करें, खरपतवार नियंत्रण के लिए उनको क्या सोचना चाहिए, और उसके बाद जो है खाद किस तरह से डालें, इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको ये बताना चाहेंगे कि मिट्टी की तैयारी के लिए आपको कुछ विशेष बातें ध्यान देनी है। जैसे जहाँ पे किसान भाइयों को ये लगता है कि हमारी पानी का निकास नहीं है, पानी जमाव ज़्यादा होता है, तो उनके लिए पहले तो उचित पानी का निकास का प्रबंधन करना चाहिए। दूसरी बात, कई किसानों का जो मिट्टी खेत होता है ऊपर नीचे होता है, तो किसान भाई हमारे क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा जुताई करके छोड़ देते हैं। लेकिन खरीफ फसल में क्या होता है कि जो मिट्टी हमारी उपजाऊ होती है वो वर्षा के पानी के साथ बह जाती, तो इसलिए किसान भाइयों को एक सलाह दी जाती है कि जो मिट्टी अगर समतल नहीं है, ऊपर नीचे है, तो उसमें बंड बनाएं, मेड़ बनाएं, और खेत की जुताई अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आपको जहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं उसके उल्टे की तरफ बुआई करें, तो जो आपकी कतार बनेगी जब वर्षा का पानी होगा तो खेत में रुकेगा। तो ये मिट्टी के प्रबंधन के साथ साथ आपको ये तो कुछ पानी के निकास का भी ध्यान रखना। दूसरी बात, मिट्टी की तैयारी के समय आपको ये भी देखना है कि जो हमारी पूरी पहले की फसल है उसको अच्छी तरह से मिलाया गया है या नहीं। अगर नहीं मिलाए होते हैं तो हमारे खेत में ढेर सारे दीमक पैथोजन लगने की संभावना। तो किसान भाइयों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है।
0: क्या होता है कि मिट्टी भी कई तरह की होती है, तो अब ये आप बताइए कि जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी है उसके प्रबंधन में हमें किस प्रकार से सावधानियां रखनी चाहिए।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देखते होंगे हमारे प्रदेश में कई जगहों पर मिट्टी कहीं काली है, कहीं रेतीली टाइप की है, कहीं डोमेट है, तो इन मिट्टियों में तरह तरह की हमारी जो प्रैक्टिसेस करते हैं, जो आप जो है कल्चरल ऑपरेशन बोलते हैं उसको, जो आप हल चलाते हैं, निकाई गुड़ाई करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों को मिट्टी के लिए प्रबंधन के लिए भी सावधानी करें। जैसे अगर मिट्टी भारी है, मतलब जैसे आपकी ब्लैक सॉयल जिसको काली मिट्टी बोलते हैं, दोमट है, तो उसमें आपको ऐसे कृषि यंत्रों को प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ किसान भाई हमारे उसको सोचते नहीं और जो भी एक ही तरह के कृषि यंत्रों का प्रयोग करके मिट्टी की तैयारी करते हैं। जैसे रेतीली मिट्टी है तो आप सभी जानते हैं हल्की मिट्टी कही जाती है, तो इसमें जो है कई किसान हमारे हल्के कल्टीवेटर से या हल से भी बुआई कर सके, लेकिन अगर भारी मिट्टी होती है तो हमारे किसानों को मिट्टी के में उन हलों को चलाना चाहिए, उन कल्टीवेटर्स को चलाना चाहिए जो आसानी से हमारे खेत की जुताई कर सके, और मिट्टी में ज़्यादा गहरापन भी करना किसानों को फायदेमंद नहीं होता, इसलिए हल्की जुताई खासकर खरीफ फसल के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बुआई के समय मिट्टी में कुछ ऐसे कृषि यंत्रों का प्रयोग करें जिससे मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक उनके खाद बीज ना जाए।
0: पिछले फसल के अवशेषों का प्रबंधन कैसे करें।
1: किसान भाइयों, देखिए आप लोग अपने खेत में जो फसल अवशेष होता है, चाहे आपका गेहूं का है, चाहे और फसल का है, सरसों का है, या कोई भी फसल का अवशेष जो होता है, आप लोग उससे ऊपर से ऊपर ऊपर कटाई कर लेते हैं तो उसका ढेर सारा अवशेष खेत में बचा रहता है, तो कई किसान तो हमारे उसको अवशेष में जला देते हैं। आपको जलाना नहीं है किसान भाइयों, मेरी सलाह है आप मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उन अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, जो बाद में सड़ करके आपके पौधों को एक पोषक तत्व प्रदान करेंगे, आपकी फसल को भी अच्छा हो और मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ की आज की ज़रूरत है उसकी भी पूर्ति हो। तो किसान भाई,

0: बार बार मेरा यही है आपसे कि आप मिट्टी में उसको जलाएं मत, उनको किसी न किसी तरह से या तो उसको इकट्ठा करके बाद में भूसा बना लें, या फिर उसको जो है खेत में इस तरह से जुताई करके उनको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दीजिए।
1: वैसे भी डॉक्टर साहब, फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण ही बढ़ता है, ये भी हमारे लिए नुकसान की बात है। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी की गहरी एवं कम जुताई करने के लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए।
0: किसान भाइयों, आप लोग हमेशा ध्यान रखें, खासकर खरीफ फसल के लिए जब भी हम जुताई करते हैं तो कई किसान हमारे गहरी जुताई कर देता है, जिसको मैं पहले भी यही बात कहा कि गहरी जुताई कर दे। गहरी जुताई आप ध्यान रखें कि अगर आपको करना है खेत में तो अप्रैल मई में फसल की कटाई के बाद करना है, लेकिन खरीफ फसल में जब आप अगर गहरी जुताई कर देंगे, जब फसल आप लेने जा रहे हैं, उस समय आपको दिक्कत ये होगी कि गहरी जुताई करने से या कोई बुआई करने जा रहे हैं किसी बीज का या कोई आप नर्सरी लगाने जा रहे हैं, तो उस समय कई तरह की कठिनाइयाँ होती है जो कि खरीफ फसल में, इसलिए गहरी जुताई भी इतना नहीं करनी चाहिए। कम जुताई भी किसानों को इसलिए कम करने के लिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि वर्षा ऋतु में हमारी नमी पूरी होती है और उसमें ये गहरी जुताई अगर करेंगे तो हमारी फसलों में जड़ों में कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि गहरी जुताई से जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, तो कम गहरी जुताई पे भी आपको ध्यान रखना है कि मध्यम गहराई तक जुताई हो जिससे हमारी नीचे जड़ें जाएं और जड़ों में किसी तरह के अवरोध न पैदा हो और उनके चाहे जैसे नर्सरी लगा रहे हैं चाहे बीज की बुआई कर रहे हैं वो अच्छी उचित दूरी पे या उचित जगह पे पहुंचे जिसमें उनकी अंकुरण होगा और पेड़ पौधे भी अच्छे होंगे।
1: खरीफ फसल की बुआई के पहले मिट्टी परीक्षण क्या हमारे लिए आवश्यक है?
0: किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके पास यूरिया DAP SSP ये सब चीज़ें होती है, आप खेत में बुआई के पहले या बुआई के समय डाल देते हैं, लेकिन आपके मन में ये धारणा नहीं होती कि हमारे पौधों में कई पोषक तत्व ऐसे ज़रूरत हैं जिनको सूक्ष्म पोषक तत्व भी है, तो हमारे किसान उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए आज के वैज्ञानिक, आज की जागरूकता में ये बताया जा रहा है हर जगह, गाँव-गाँव में, हर ब्लॉक में, पंचायत लेवल में, कि किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग पे भी बढ़ावा देना है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को ये देखना है मिट्टी का परीक्षण करके कि क्या हमारी मिट्टी में उन पोषक तत्वों की कमी है या भरमार है कि जिनको हमारे शरीर के साथ साथ हमारे पौधों की जरूरत होती है। इसलिए किसान भाइयों, खरीफ फसल बुआई के पहले मेरा यही एक सुझाव है कि आप मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं और मिट्टी परीक्षण से ही आपको ज्ञात होगा कि कौन सा पोषक तत्व आपके पौधों को देने की जरूरत है या कौन सा पोषक तत्व आपके पौधों की जरूरत नहीं है, तो उसी हिसाब से आप खाद का प्रयोग करेंगे।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब। अब आगे हम ये जानना चाहेंगे खरीफ की फसल में जल प्रबंधन का क्या महत्व है।
0: किसान भाइयों, देखते हैं कि खरीफ फसल अपने मध्य प्रदेश का पूरे देश में हमारी ज़्यादातर फसलें वर्षा आधारित होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में रेनफेड कहते हैं कि वर्षा आधारित फसल होती है, तो उसमें अलग से हम लोग बहुत कम पानी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जब पानी हमारी ज़रूरत होती तो उस समय पानी नहीं आता, और जब पानी ज़रूरत नहीं होती तो उस समय एकाएक ऐसी बारिश होती है कि चाहे कोई आप सोयाबीन लगाए हों, चाहे मक्का लगाएँ या कोई सब्जी लगाए हैं, तो खेतों में पानी भर जाता है। तो आपको यहाँ पे सलाह दी जाती है कि जब अगर पानी खेत में भर जाए तब आपके पास एक ही चारा होता, उसको निकाल लें। तो कई जगहों पे ऐसी भी समस्या होती कि निकास का फिसाद। तो किसान भाइयों, आप ध्यान रखें कि कोई भी खरीफ फसल की बुआई करें, चाहे सब्जी की, दलहनी की, या तिल वाली या सीरियल वाली, उसमें पानी उचित पानी के निकास का प्रबंधन ज़रूर आप बना लें जिससे आपको उसमें परेशानी ना हो।
1: खरीफ फसल में खरपतवार प्रबंधन का क्या महत्व है?
0: देखिए, खरीफ फसल में हमारे कई तरह के खरपतवार, चाहे सोयाबीन उगाएं, चाहे मक्का उगाएं, चाहे कोई भी फसल उगाएं, सब्जी, ढेर सारे खरपतवार निकलते हैं। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि उसमें दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको एक सलाह दी जाती है, खरीफ फसल बुआई के पहले अगर आप इसको गहरी जुताई करके या अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था कर लें तो आपका जो खरपतवार समस्या खरीफ फसल में आने वाली होती है वो उस समस्याओं से आपको बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण में जो हमारा किसान भाई खर्च करता है, और हम लोग वैज्ञानिक लोगों ने देखा है कि हमारी खरपतवार से 30-40% उत्पादन में कमी होती है अगर खरपतवार का नियंत्रण ना किया जाए। कीड़े बीमारियों से भी 30% तक नुकसान हो जाता है, ऐसे बीमारियों से भी ऐसे

0: ढेर सारे नुकसान होता है। तो हमारे किसानों को यही हमेशा सलाह देते हैं कि आप खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पहले ही कुछ व्यवस्थाओं को करें, जिसमें गहरी जुताई है या ग्रीन हरी खाद का मिश्रण गर्मियों में जुताई करके करें, तो खरपतवार के नियंत्रण की बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है। वैसे तो ढेर सारी सुविधा है जिसको यांत्रिक विधि भी कहते हैं, मशीनों के चला वैसे आप मजदूरों के द्वारा निकाल करके, इसके अलावा ढेर सारे रसायन भी हैं। तो मैं आपको यही किसान भाइयों कहेंगे कि रसायनों पर आप ना जा करके जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो आप लोग तरीका अपनाते हैं गलियों में गहरी जुताई करके या यांत्रिक बीज से, इसको करेंगे तो आपका खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो जाएगा और आपकी समस्या नहीं रहेगी।
1: डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहेंगे खरीफ फसल में देसी खाद व कंपोस्ट को मिट्टी में मिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: किसान भाइयों, आप लोग खरीफ फसल लेने के पहले, हमारे बहुत से किसान ऐसे हैं जो अप्रैल मई में देसी खाद या कंपोस्ट को खेत में फेंक देते हैं। तो हमारा किसान ये नहीं सोचता कि क्या उसके फेंकने से उसका फायदा हो रहा है नहीं। तो किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ वैज्ञानिक तरीके से बताने जा रहा हूँ कि जो आप देसी खाद कंपोस्ट फेंकते हैं, ढेर सारे पोषक तत्व गर्मी, तेज गर्मी की वजह से नुकसान हो जाता है, और कभी पोषक तत्व उसमें जो बचा हुआ है, इतनी बारिश जब कभी हैवी बारिश होती है, ज्यादा तेज बारिश होती है, तो उसके पोषक तत्व वर्षा के साथ बह जाते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि आपका कोई उस देसी खाद या कंपोस्ट खाद एक डेढ़ महीना जो मिलाते हैं पहले खरीफ फसल के लिए, उसका कोई फायदा नहीं होता। आप किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखें, खरीफ फसल की बुआई के 10 दिन या एक हफ्ते पहले उन कंपोस्ट या देसी खाद को डालेंगे तो आपकी फसल का भी फायदा होगा और जो पोषक तत्व आपका पौधों को चाहिए वो पौधों को मिले। इसलिए किसान भाइयों, इस खाद को डालने के लिए कुछ इन सावधानियों को हमेशा ध्यान में रखें तो निश्चित ही आपको फायदा होगा।
1: डॉक्टर साहब, मिट्टी की तैयारी में किन किन उपकरणों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए?
0: देखिए किसान भाइयों, हमारे आजकल जो है ट्रैक्टर ही सोचते हैं, ट्रैक्टर से गहरी जुताई करें, लेकिन हम लोग जो है कई आजकल, चाहे रबी फसल हो चाहे खरीफ फसल हो, हर तरह की फसलों के लिए आज हम लोग संरक्षित खेती की बात करते हैं किसान भाई, कि कम जुताई में एक बार हैप्पी सीडर है या इस तरह की मशीनों का प्रयोग करके बुआई कर देते हैं। खासकर हमारा, हम किसान भाइयों को एक और यहाँ पे सलाह देंगे कि हम लोग संरक्षित खेती, जिसमें फसल अवशेष को बिना जलाए, बिना उसको जो है किए, हम ऐसी मशीनें बनी हैं जिसको हैप्पी सीडर भी नाम देते हैं, आज कस्टम हायरी में हर कई कई पंचायत में उपलब्ध है, किसान जहाँ किसान उनको जो है किराया दे करके उन चीज़ों का प्रयोग करके इन फसलों की बुआई कर रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो लाइट कल्टीवेटर, जो कम गहराई के जाने वाले खरीफ फसल में, इन उपकरणों का प्रयोग करने से हमारी खरीफ की फसल अच्छी होती है।
1: और डॉक्टर साहब, अब ये और भी आपसे जानना चाहेंगे, मृदा स्वास्थ्य के लिए किन किन पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए?
0: किसान भाइयों, मैं ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा किसान भाई केवल यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में नहीं ध्यान देता। तो किसान भाइयों से मैंने पहले भी कहा कि मिट्टी परीक्षण करने के बाद ही पोषक तत्व डालें। तो स्वास्थ्य की यहाँ तक बात होती है तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का मौजूद होना, रहना बहुत ज़रूरी है। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे तो हम मान के चलिए कि आपका मिट्टी भी स्वस्थ होगी, उसका भौतिक रचना, रासायनिक रचना और जैविक संरचना बहुत अच्छी होगी, और ये अच्छी होगी तो आपके पौधे अच्छे होंगे, और पौधे अच्छे होंगे तो उस पर जो फल सब्जी अनाज होगा वो भी जब अच्छा होगा, और जो मनुष्य उसको खिलाएंगे तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आप लोग मन में बैठा लें कि आपको मिट्टी परीक्षण के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करना, सूक्ष्म पोषक तत्वों का, जो कि आप डायरेक्ट रसायन के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते, जैविक खाद या कंपोस्ट के रूप में करेंगे, जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ हमारे पोषक तत्वों को भी अच्छा, पोषक तत्वों को भी बढ़ावा दे।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। किसान भैया हरो, आपने सुनी जे भेंटवार्ता, जी को विषय हतो खरीफ फसल हेतु मिट्टी की तैयारी में सावधानियां, विशेषज्ञ हते डॉक्टर अमर बहादुर सिंह। हमें आशा है कि भेंटवार्ता सुन के आप और उनको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई हुई है। और अब सुन लेते हैं लोकगीत, जे कहरवा गीत है, जिये गाँव है अनरत लाल बैरसिया ने।

किसान भैया हरो, अब तक कृषि सलाह भी आप और उनको दे देते हैं। जैसे कि आप जानत हो कि जून को महीना खरीफ की मुख्य फसल की शुरुआत को समय होते। मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रन में किसान धान, मक्का, सोयाबीन और कपास की बुआई के लाने खेत तैयार करते हैं। कीटों से बचाव के लाने बीज को उपचार करें और बारिश के पानी को संचय करके मेड़बंदी करें। फसल रोपाई के समय खेत में नमी, जल निकासी को उचित ध्यान रखियो। अदरक, हल्दी की बुआई को जो सबसे अच्छा समय होते और मिट्टी की सेहत सुधारवे के लाने बर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद को प्रयोग करें। और अब चलत चलत कल के कार्यक्रम की भी जानकारी आप और उनको दे देते हैं। काल सवेरे कृषि चर्चा में सुनियो विषय, समेकित कृषि प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार हुए डॉक्टर सतीश कुमार परसाई। और संजा के बिरिया में सुनियो ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। अब दीजिए रीता बहन को आज्ञा। राम राम।

श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस समय रात के 8 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का पहला गीत जिसे हमने लिया था तड़ी पार फिल्म से। युगल स्वर दिया था एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने। बोल लिखे थे समीर ने, धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आसमां से ऊंचा फिल्म से। आवाज से आप सुनेंगे कुमार सानू, साधना सरगम, अभिजीत, अनवर और सारिका कपूर की। शब्दकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

श्रोताओं, ये गीत आपने जो सुना, जिसे हमने लिया था आसमां से ऊंचा फिल्म से, आवाज़ से आप सुन रहे थे कुमार सानू, साधना सरगम, अभिजीत, अनवर और सारिका कपूर की। बोल लिखे थे इंदिवर ने, धुन तैयार की थी राजेश रोशन ने। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब सुनते हैं साथी फिल्म का वो गीत जिसमें आप आवाज़ सुनेंगे कुमार सानू की। शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना है नदीम श्रवण की।

श्रोताओं, ये गीत था साथी फिल्म से, आवाज़ दी थी कुमार सानू ने, शब्द रचना थी समीर की, संगीत रचना थी नदीम श्रवण की। अब हम आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में अनाड़ी फिल्म का गीत। शब्दकार हैं समीर, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

वो लिखी थी समीर ने, धुन तैयार की थी आनंद मिलिंद ने। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब हम जो गीत शामिल करने जा रहे हैं उसे हमने लिया है रोग फिल्म से। आवाज़ दी है के ने, संगीतकार हैं MM करीम।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम। श्रोताओं, पॉप म्यूजिक के प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं नितिन बाली।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का अगला पॉप सॉन्ग। आवाज नितिन बाली की।

श्रोताओं, यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: सतपुड़ांचल की वादियों में गूंजती आपकी अपनी आवाज
1: आकाशवाणी बालाघाट,
0: शिक्षा सूचना और मनोरंजन की त्रिवेणी,
1: हर पल हर दम आपके साथ, यूं ही बना रहे आपका हमारा साथ।
0: रोजाना सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट।

श्रोताओं, पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम अब हमारा संपन्न हुआ। आज हम आपको पॉप म्यूजिक के प्रोग्राम में सुनवा रहे थे नितिन बाली के गाए कुछ पॉप सॉन्ग। ये आकाशवाणी बालाघाट है। इस समय रात के 8:45 होने जा रहे हैं। अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को

0: सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 1,600,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने

0: कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे।

0: चर्चा का विषय है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्पॉटलाइट समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 9:30 हुए हैं। अब हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैंसी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
3: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
2: क्या तकते हो?
3: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान अली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी है उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को 30 मार खा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के

0: कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैखाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
2: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों, सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी ना खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बम्बई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलेस मास्टर विठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वाह रे जमाने, कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा आशो साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया।

0: कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
1: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रक कला की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
2: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
0: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर, वास्ती पहाड़ी सान्याल, बेमिसाल गीता बाली, मधुबाला सुरैया, लाजवाब नरगिस, मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूँ।
2: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज, शर्मिला टैगोर, बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता अपने के मुकाबले में कर चुका हूँ। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने की कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूँ तो वो मुझे बदमाश, कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो, लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
3: मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी?
4: बच्चा मैं जूता खराब कर दिया, साफ करो।
3: मेरी बेटी कहाँ है?
4: बैठे कौन सा बेटे?
3: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
4: मैं कुछ याद नहीं।
3: याद करो, प्लीज याद करो।
4: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
3: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
4: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया और तुम मेरे कदमों में।
3: मुझे सिर्फ इतना बतला दो, मेरी बेटी कहाँ है?
4: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
3: मुझे एक दोस्त से मिलने दो प्लीज।
4: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
0: गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहां तक कि मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस एम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल

पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर है? वही खामिन ललिता बाई का है? और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना? छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था। कौन सी पिक्चर थी? आ हा, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर यह ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता है। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।

0: मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए, कम वक्त देसी मैन जंगली
1: हाथी हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
0: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुम्हारी ये छेड़छाड़ नहीं चली।
0: अरे चुप बे जंगली वाला, कहीं का चल, एक दो डोल पानी दुला, नहा धो के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
3: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई, कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
3: धूत। अरे वही बसंती।
1: अच्छा, ओ तुम्हार मार छुट्टिया।
3: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
4: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है, तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: आग में तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गए। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं, साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
3: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
4: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे।

शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद्ध। नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों, बात बाहर ना जाए। मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट, रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
2: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर।
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
2: आज के फनकार।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: जाना।
1: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
2: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है इस प्रेम में।

श्रोताओं, अब तक आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आशीष सेंद्रे।

श्रोताओं, कार्यक्रम का शुरुआती गीत था गुमराह फिल्म से। आवाज़ दी थी महेंद्र कपूर ने। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। संगीत तैयार किया था रवि ने। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के साथ अब अगला गीत जुड़ने जा रहा है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। गीतकार है वर्मा मलिक। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये सुमधुर गीत था रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। गीतकार थे वर्मा मलिक, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत पेरेलाल। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। अब सुनिए नगीना फिल्म का गीत। आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति ने, बोल लिखी आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में अभी आप सुन रहे थे नगीना फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की शब्दचना को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में अब सुनिए साहिबा फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी।

0: श्रोताओं, ये गीत था अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में साहिबा फिल्म से। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरी।
1: सतपुड़ा अंचल की वादियों में गूंजती आपकी अपनी आवाज
2: आकाशवाणी बालाघाट,
1: शिक्षा सूचना और मनोरंजन की त्रिवेणी,
2: हर पल हर दम आपके साथ, यूं ही बना रहे आपका हमारा साथ।
1: रोजाना सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का ये गीत। आवाज़ से दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

0: محمد زبیر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है. नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है.
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है.
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है. राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है.
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं. यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं. इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की. साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है. इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है. श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा. सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है. वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है. इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है. रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है. मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है. दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है. ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल